0: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
1: गर्मजोशी समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
0: हुण तुसी उहनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
1: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
1: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
0: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
2: हेलो नमस्ते सच्चिका लाता।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स

0: का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
0: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। Listening to Calgary's most popular radio, Radio Sahara, 94.7 FM.
3: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
4: Recently read, Ishambhuti ji kehte hain, the highest form of intelligence is the ability to observe without evaluating. Sone se pehle bhi thought, subah utte hi bhi thought, meditation mein bhi thought, kyunki mind continuously kisi na kisi direction mein bhaag raha hai. Ishambhuti ji kehte hain, bahut hi khoobsurat cheez hai, comparison is the greatest cause of inner suffering. Bachpan se hi comparison start ho jata hai, dekho wo kitna intelligent hai. Mind ko stillness jo hoti hai wo uncomfortable lagti hai. Aaj ki duniya mein hum intelligence ko mostly degree, marks, memory, knowledge, achievements se measure karte hain, lekin Krishnamurti ji ke according information aur intelligence same cheez nahi hai. आपको हैरानी होगी, मेडिटेशन पर किताब है, कृष्णमूर्ति जी ने कई जगह मेंशन किया वो मेडिटेशन के अगेंस्ट है. डर इसलिए होता है क्योंकि अगर ये इंसान चला गया तो क्या होगा, अगर ये बदल गया तो क्या होगा, अगर मुझे इग्नोर कर दिया तो क्या होगा. और कृष्णमूर्ति जी प्यार और अटैचमेंट में डिफरेंस समझाते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से. उन्होंने कहा, ये लाइन इतनी पावरफुल थी कि जब उन्होंने इस बात को बोला तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड शॉक हो गया. सच तब शुरू होता है जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, वापस खुद पे आते. कृष्णमूर्ति जी कभी भी किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो किसी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के अगेंस्ट थे. मेडिटेशन का पर्पस सिर्फ टेक्निक कलेक्ट करना नहीं है, मेडिटेशन का पर्पस है क्लैरिटी. थिंकिंग से नहीं आती, ज्यादा सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी आती है. अपने आप को सुनने के बजाय आप पूरी दुनिया को सुन रहे हो और आप अपने आप को क्या स्टैंप लगा चुके हो. सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और इंटेंस बना दिया बाय द वे. आपको किसी से बेहतर नहीं बनना, आपको बस अपने आप को जानना है और अपने आप को थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहना है. बहुत सारे लोग मैकेनिकली जीत रहे हैं, हैबिचुअली रिएक्ट कर रहे हैं. हमारी कंडीशनिंग जो है रियलिटी को तो खत्म ही कर रही है ना. रियल इंटेलिजेंस का साइन क्या है, एक बहुत अच्छी कोट है, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ. एक क्राउडेड माइंड जो है वो कुछ भी सही से देख ही नहीं पाता, वो शोर क्लैरिटी को कॉल कर रहा है. बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी वाले पानी में आप अपनी परछाई को नहीं देख पाते. अब हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक कॉल्ड द बुक ऑफ लाइफ. दिस इज माई रिसेंटली रीड, बीन रीडिंग इट कम्प्लीट. मैंने किताब इसको नहीं किया है, I'm on my way to complete this. This touched me so much कि मुझे लगा कि ये हमें इसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए. And I can tell you that जो thoughts इसमें हैं, मतलब it is so aligned to what we want to do in life, जो हम करना चाहते हैं, it is so aligned. ऐसा लगता है कि ये किताब अगर पहले मिली होती तो और भी मजे आते. But I think हर चीज का एक सही वक्त होता है, ठीक है. And I'm sure about it, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा. आज इस किताब से ऐसी 10 lessons broadly मैं discuss करूंगा, 10 lessons discuss करेंगे सिर्फ, जिसके बाद आपको बहुत कुछ लाइफ का मीनिंग समझ में आएगा. और द बुक ऑफ लाइफ डेली मेडिटेशन विद जे कृष्णमूर्ति. जे कृष्णमूर्ति जी स्पिरिचुअली उनके बारे में बहुत बात की गई, उन्होंने बहुत बात की, बहुत सारी किताबें लिखी. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक एवर. एंड आई वॉज वेरी टच्ड व्हेन आई रेड दिस. सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला लेसन हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं वो है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट. और ये बहुत लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, ये अगर इसको सही से डीपली इसको थोड़ा सा समझा जाए ना, इट इज अ लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट. ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन अगर हम इसको डीपली समझे तो पूरी लाइफ इसी एक हैबिट की वजह से आसान हो सकती है और इसी एक हैबिट की वजह से कॉम्प्लिकेट हो सकती है. हम कॉन्टिन्यूसली हर चीज को जज कर रहे हैं. जब हम किसी इंसान को देखते हैं, जज करते हैं, अच्छा अच्छा है बुरा है सेल्फिश है इंटेलिजेंट है वीक है स्ट्रांग है क्या है सिचुएशन को देखते हैं तो क्या बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अनफेयर है लकी है अनलकी

और सबसे डेंजरस हम खुद को जज करते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं वीक हूँ, मेरा मन बहुत खराब चल रहा है, पता नहीं मैं उतना स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ, मैं चीजों को संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा, मैं काफी हूँ या नहीं हूँ, मुझे सब कुछ आता है नहीं आता है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, एंड इट्स ऑल अबाउट अस। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जब तक ऑब्जर्वेशन के साथ जजमेंट जुड़ा रहेगा तब तक क्लैरिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जजमेंट रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, रियलिटी को क्लियरली विजिबल नहीं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है तो नॉर्मली आप क्या करते हो, या तो आप सप्रेस करते हो, दबा देते हो, या आप रिएक्ट करते हो, या अंदर से गिल्ट महसूस होता है, यार यार क्या कर रहा हूं मैं, यार क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूं। लेकिन इस किताब में बताया गया सिर्फ ऑब्जर्व करो, नोटिस करो। नोटिस क्या करना होता है, जब आपको गुस्सा आता है तो शरीर में होता क्या है, शरीर का कौन सा हिस्सा बहुत सख्त हो जा रहा है या सॉफ्ट हो जा रहा है, कहां चल रहा है वो, अंदर यहां चल रहा है क्या, गट में चल रहा है क्या। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो सांसें कैसी हो रही है, थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपको कैसी एनर्जी महसूस हो रही है, ये ऑब्जर्वेशन है। मतलब बिना ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जर्व करना जीत है। द मोमेंट यू डीपली ऑब्जर्व योरसेल्फ, अवेयरनेस क्रिएट होती है, और अवेयरनेस ही ध्यान का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट। अवेयरनेस अपने आप में हीलिंग है, याद रखना इस बात को। एग्जैक्टली इसी तरह फियर को ऑब्जर्व करो, जेलिसी को ऑब्जर्व करो, क्यों हो रही है मेरे को जेलिसी, अकेलेपन को ऑब्जर्व करो, अटैचमेंट को ऑब्जर्व करो, लड़ो मत, भागो मत, जज मत करो, सिर्फ डीपली उस बात को समझना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट इवैल्यूएटिंग। जब ऑब्जर्वेशन प्योर हो जाता है, माइंड नेचुरली साइलेंट होने लगेगा, और यही सबसे बड़ा हमारा इनर पीस है, वो शुरू होता है। लेसन नंबर टू, द माइंड नेवर स्टॉप्स बिकॉज इट इज ऑलवेज एस्केपिंग। कृष्णमूर्ति जी का एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि माइंड ना कॉन्स्टेंटली एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भाग रहा है, और इसी वजह से माइंड कभी शांत होता ही नहीं है। बॉडी थक जाती है लेकिन माइंड फिर भी चल रहा होता है, सोने से पहले भी थॉट, सुबह उठते ही भी थॉट, मेडिटेशन में भी थॉट, क्योंकि माइंड कॉन्टिन्यूसली किसी ना किसी डायरेक्शन में भाग रहा है। कभी पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब। और कभी फ्यूचर में कि मैं फेल हो गया तो, प्रॉब्लम आ गई तो, चीजें ठीक नहीं हुई तो, ठीक हो भी जाएगा ना, मैं कर लूंगा ना, या फिर कभी कंपैरिजन में, उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे रह गया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि माइंड साइलेंस इसलिए एक्सपीरियंस नहीं करता क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता ही नहीं है, आज में रहता ही नहीं है। माइंड को स्टिलनेस जो होती है वो अनकंफर्टेबल लगती है। मोबाइल फोन है, चोर है, ओवरथिंकिंग है, गॉसिपिंग है, एंडलेस एंटरटेनमेंट है, बिना बात की चिंता, ये सब चीजें एस्केप है हमारे लिए। हम अकेले शांत बैठ ही नहीं पाते, लिफ्ट में घुसते हैं फोन निकल जाता है, एक लाइन में खड़े होते हैं हम ढूंढ लेते हैं डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है ना, पता क्या होता है, आप खुद से मिलते हो, प्रॉब्लम हम खुद से मिलना नहीं चाहते, ये माइंड अवॉइड करता है। आपको हैरानी होगी, मेडिटेशन पर किताब है, कृष्णमूर्ति जी ने कई जगह मेंशन किया वो मेडिटेशन के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि एक साइलेंट मन ना कंट्रोल के थ्रू अचीव नहीं किया जा सकता, ये अंडरस्टैंडिंग के थ्रू किया जा सकता है। मतलब माइंड को फोर्सफुली चुप कराने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। ऑब्जर्व करो, थॉट कैसे आते हैं, फियर कैसे क्रिएट होता है, माइंड कैसे कॉन्टिन्यूसली चीजों से भाग रहा है, और धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से माइंड नेचुरली शांत होने लगता है। जैसे मिट्टी के पानी में, मिट्टी जैसे जैसे बैठने लगती है पानी साफ होने लगता है ऊपर का, आपने पानी को साफ नहीं दिया, आपने वक्त दिया शांत होकर, वैसे ही अवेयरनेस से माइंड सेटल होने लगता है, और तब इंसान पहली बार रियल साइलेंस को एक्सपीरियंस करता है, जो कि हम सभी को करना चाहिए। पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए, शांत होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन, फियर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ थॉट। डर इसलिए होता है क्योंकि थॉट्स होते हैं, सोच होती है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, फियर इज क्रिएटेड बाय थॉट। ये लाइन सिंपल है लेकिन अगर आप इसको डीपली समझो, मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो डर है रियलिटी में होते ही नहीं है, बहुत सारे डर इमेजिनेशन में होते हैं। क्या बात है, मतलब सोचो, ध्यान से सुनना, मतलब लाइफ बदल जाएगी इसको समझते ही। आधे से ज्यादा लोग ओवरथिंकिंग बंद कर देंगे आज। आप इस मोमेंट में सेफ हो सकते हो, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन माइंड फ्यूचर में इमेजिन करता है, अगर कुछ गलत हो गया तो, अरे कुछ होगा ही नहीं और होता ही नहीं है, उसने मुझे छोड़ दिया था, अरे नहीं छोड़ के जाएगा भाई, कभी जाएगा ही नहीं, मैं फेल हो गया तो, अरे नहीं हो गए भाई फेल, हो गए ही नहीं फेल, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्यों करेंगे रिजेक्ट तुम्हें। बट मन हमेशा फ्यूचर में, थॉट्स में, तो थॉट से डर बेटर। धीरे धीरे थॉट इमेजिनेशन क्रिएट करता है, और इमेजिनेशन से क्या होता है, फियर। कृष्णमूर्ति जी ने बहुत खूबसूरत बात कही, फियर का कनेक्शन मोस्टली व्हाट माइट हैपन से होता है, क्या हो सकता है, ना कि व्हाट इज हैपनिंग से। सही नहीं है, फियर का कनेक्शन मोस्टली व्हाट माइट हैपन से होता है, ना कि व्हाट इज हैपनिंग से, क्या हो सकता है, जो हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं। इसलिए जॉब का फियर, रिलेशनशिप का फियर, अकेलेपन का फियर, डेथ का फियर, रिजेक्शन का फियर, आने का फियर, जाने का फियर, ये सब साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शंस हैं। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर बन गए हो, माइंड कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर।

पिक्चर की मूवी बना रहा होता है और बॉडी उस मूवी को रियल मानती है, इसी वजह से एंजाइटी होती है, इसी वजह से स्ट्रेस होता है। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, जितना हम फियर से भागते हैं उतना ही फियर स्ट्रांग होता है। और कृष्णमूर्ति जी ने कहा खूबसूरत बात, डू नॉट एस्केप फियर, ऑब्जर्व इट, डर से भागो मत, ऑब्जर्व करो। वो नहीं डर के आगे जीत है, डर को देखो जीत है, ऑब्जर्व इट। मतलब जब फियर आए इमीडिएटली डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो, अरे मन भटकाओ इधर उधर जाओ, नहीं नहीं नहीं, क्वाइटली ऑब्जर्व करो बॉडी क्या फील कर रही है, ब्रीदिंग कैसे चल रही है, थॉट क्या बोल रहे, क्या चल रहा है मन में, विदाउट जजमेंट, विदाउट सप्रेशन, विदाउट एस्केप। और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि काफी हद तक थॉट क्रिएटेड है, बस आपने मनगढ़ंत बात बना ली है मन मन में। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें लगता है कि हमने भी कुछ ना कुछ जीवन में किया है, इतना पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना बिना सोचने के लिए किए मैंने, मुझे भी एक्सपीरियंस है, मेरे भी बच्चे, मैंने भी देखा है, मेरे भी छोटे भाई बहन सब कुछ मैंने उनको हैंडल किया है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, पढ़ाती हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, जाती हूँ, मैं जॉब करता हूँ, करती हूँ, ये सब चल रहा है। मन आप ही लड़ रहे हो और आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो, अरे ऐसे थोड़ी ना सोच आ गई है मेरे अंदर। और जब थॉट्स को डीपली आप समझ लोगे ना, आपके फियर डिसॉल्व होने लगते हैं। तो ट्रू फ्रीडम तब होती है जब इंसान फियर को समझ लगता है, ना कि उससे भागने लगता है। अनदर थिंग, अटैचमेंट क्रिएट्स सफरिंग। बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ये, जहां पर अटैचमेंट होता है वहीं डर होता है। Where attachment begins, fear also begins. हम generally attachment को प्यार समझते हैं, कई बार बहुत genuinely प्यार होता है, कई बार वो सिर्फ attachment भी होती है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने यहाँ पर कहा कि कई बार attachment का root प्यार नहीं होता है, fear होता है, fear. Attachment का कारण fear ज्यादा होता है, प्यार नहीं, unconditional love नहीं होता, डर होता है इसको मैं खो ना दूं तो पकड़ लेता हूँ, मैं अकेला न रह जाऊं तो इसको जाने ही नहीं दूंगा, मुझे रिजेक्ट न कर दे तो मैं इसको काबू में रखता हूँ, ये नहीं तो मेरा कौन, इमोशनल एम्प्टीनेस, इनसिक्योरिटीज। और इसी फियर की वजह से हम लोगों को टाइटली होल्ड करके रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि उस होल्ड करने के चक्कर में उस इंसान के लिए कितना अनकंफर्टेबल हो सकता होगा, वो तो हम सोचते ही नहीं खैर, बट ये डर कितना देता है, इनसिक्योरिटी। आपने नोटिस किया होगा जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी ना उतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे आप, उतने ज्यादा पॉजेसिव, उतने ज्यादा जेलसी, उतने ज्यादा एंजाइटी, उतना ज्यादा कंट्रोल, क्योंकि प्यार नहीं है वो, प्यार है बट प्यार को ओवर शेडो कर लिया है आपके फियर ने। But you let go. You don't stop your love, the person you love the most. You don't stop that. You let it flow. क्योंकि अंदर एक constant डर होता ही है। अगर ये इंसान चला गया तो क्या होगा? अगर ये बदल गया तो क्या होगा? अगर मुझे ignore कर दिया तो क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं अकेला रह जाऊंगा? और धीरे धीरे relationship प्यार से ज्यादा fear driven हो जाता है। और कृष्णमूर्ति जी प्यार और अटैचमेंट में डिफरेंस समझाते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। उन्होंने कहा अटैचमेंट कहता है कि तुम मेरे हो, प्यार क्या कहता है, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो तुम कहाँ जाओगे, मेरे ही रहोगे चाहे मैं तुम्हें पकड़ूं या ना पकड़ूं। अटैचमेंट ना कंट्रोल करता है, प्यार अंडरस्टैंड करता है। अटैचमेंट फियर से क्रिएट होता है, प्यार से पीस क्रिएट होता है, शांति मिलती है, इनसिक्योरिटी नहीं। आप चेक करो आपके आसपास जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उनके बारे में सोचकर उनसे मिलकर आपको अनरेस्ट तो महसूस नहीं होता, बेचैनी बढ़ती तो नहीं है, ये शांति बढ़ती है। उन्होंने ये भी कहा जब हम इमोशनली किसी चीज पर डिपेंड करने लगते हैं तो हमारा पीस पूरी तरह से उसके कंट्रोल में चला जाता है। अब वो इंसान हैप्पी है तो तुम भी हैप्पी हो, वो इग्नोर करे तो तुम डिस्टर्ब हो, यानी कि तो हमारी इमोशनल स्टेट जो है वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होने लगती है पूरी तरीके से। लेकिन वापस से वो यही बोल रहे हैं कि रियल लाइफ एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज नो फियर, फुल फेथ, कोई डर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, सिर्फ प्यार है, ना रोक रहे हो ना जाने दे रहे हो, कुछ लेट इट फ्लो। मतलब ट्रू कनेक्शन तब आता है जब रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग हो, अवेयरनेस हो, स्पेस हो, फ्रीडम हो, ना कि कांस्टेंट इमोशनल डिपेंडेंसी। और जब इंसान अपने अंदर कंप्लीटनेस फील करना शुरू करता है खुद के अंदर, तब अटैचमेंट धीरे धीरे डिसॉल्व होता है और सिर्फ प्यार को जगह मिलती है, और उसकी जगह एक पीसफुल, मैच्योर और एक ब्यूटीफुल इंसान, प्यार भरा इंसान बाहर निकल कर आता है, वो ज्यादा जरूरी है। हम कह देते हैं ये इंसान से मेरा अटैचमेंट है, मेरे माँ बाप से मेरा अटैचमेंट है, बच्चों से, लेकिन वो कई बार घुटन बन जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, अटैचमेंट और प्यार में थोड़ा फर्क होता है और ये हम सभी को समझने की जरूरत है। लेसन नंबर 5, ट्रुथ कैन नॉट बी गिवन बाय एनीवन। इसमें कहा गया ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, और बहुत सही है कृष्णमूर्ति जी का, बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट में से एक है। समझते हैं ये क्या है, ये लाइन इतनी पावरफुल थी कि जब उन्होंने इस बात को बोला तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड शॉक हो गया। स्पिरिचुअलिटी को जितने लोग फॉलो करते थे सब, उनका मीनिंग क्या था, उनका मीनिंग था कोई भी गुरु, कोई भी रिलीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिस्टम आपको फाइनल ट्रुथ नहीं दे सकता, क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट सच है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। ट्रुथ एक लिविंग एक्सपीरियंस है, सच को, सच्चाई को जीना होता है,
हर कोई अपने अपने रास्ते बता सकता है, अपना अपना पाथ बता सकता है। हम जनरली लाइफ में किसी को फॉलो करना चाहते हैं, कोई हमें डायरेक्शन दे, कोई गारंटी दे दे, कोई बोले बस ये करो तुम्हारी नहीं है पार। लेकिन कृष्ण

जी ने बहुत प्यारी बात बोली, द मोमेंट यू ब्लाइंडली फॉलो समवन यू स्टॉप अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। जब आप किसी को ब्लाइंडली आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू करते हो तो आप अपने आप को समझना बंद कर देते हो। याद है हमने इस बारे में कई बार बात की, जब मैंने हमेशा ये बोला कि ब्लाइंडली मत फॉलो करो यार, क्योंकि जब आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे किसी और को समझाना होगा तो कैसे समझाओगे, जानो समझो उनके अकॉर्डिंग। रियल स्पिरिचुअलिटी इमिटेशन नहीं है, रियल स्पिरिचुअलिटी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, खुद को ज्यादा समझना। अगर आप सिर्फ किसी और के बिलीफ को रिपीट कर रहे हो तो वो नॉलेज कैसे हो सकती है? सच तब शुरू होता है जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, वापस खुद पे आ जाओ। कैसे? अपने थॉट से, अपने डर से, अपनी अटैचमेंट से, अपने रिएक्शन से, अपने डिजायर से, अपने ईगो के पैटर्न से, बिना भागे और बिना प्रिटेंड किए। कृष्णमूर्ति जी के बारे में आपने सुना होगा, तो कभी भी किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो किसी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के अगेंस्ट थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ब्लाइंडली किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी पर डिपेंड हो जाते हो तो आपकी अवेयरनेस वीक होती है, आप खुद को देखना बंद कर देते हो। देखो, किसी गुरु का आपके जीवन में होना, वो आपको डायरेक्शन दे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉर्च लेकर आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, तो उस रास्ते पर अंधेरा है, बहुत डार्क अंधेरा, मैंने टॉर्च जलाई, आपने टॉर्च देखी, रोशनी हो गई, हाँ रास्ता दिख रहा है, दिख रहा है। क्या आप अभी भी उस रास्ते पर आंखें बंद करके चल सकते हो? क्या चलना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि आंखें बंद करके चले तो चलोगे कैसे, किसी और को कैसे लेकर जाओगे, खुद को देखना बंद नहीं करना है। तो बहुत पूरा मैसेज बिल्कुल सिंपल है, सबको सुनो, समझो, गुरु को फॉलो करो, जिसके साथ कनेक्शन है ना वो फीलिंग आती है यार उसके साथ, उसको देखकर अच्छा लगता है, सुनकर लगता है अपने जैसा है, लगता है कि यार इनको मैं फॉलो करूंगा तो यार सब कुछ हो जाएगा। पर ध्यान रखना, अपने आप को डिस्कवर करते रहना, अपने आप को समझते रहना। मेडिटेशन का पर्पस सिर्फ टेक्निक कलेक्ट करना नहीं है, मेडिटेशन का पर्पस है सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, इनर क्लैरिटी। जब इंसान ऑनेस्टली खुद को समझना शुरू करता है तो धीरे धीरे वो अपने बिलीफ खुद के क्रिएट करता है, खुद के, और ये आपकी ग्रोथ की रियल अंडरस्टैंडिंग है, रियल लेवल है। वही इंटेलिजेंस ट्रुथ के सबसे पास होती है, इसलिए इंटेलिजेंट बनना है लेकिन अवेयरनेस के साथ। लेसन नंबर 6, कंपैरिजन डिस्ट्रॉय पीस। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं बहुत ही खूबसूरत चीज है, कंपैरिजन इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ इनर सफरिंग। सुना भी हम लोगों ने, अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा स्ट्रेस कह सकते हो, कंपैरिजन से ही आता है, बचपन से ही कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, शर्मा जी के बच्चे, वर्मा जी के बच्चे, उसके मार्क्स कितने ज्यादा है, उसका करियर कितना बेटर है, आपने बताया कि मैं तो सेकंड आया हूँ, आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, आप फोकस करते हो फर्स्ट कौन आया है, उसका करियर बेटर, उसका बेटर कॉलेज में हो गया, तुम्हारा क्या हुआ, तुमने क्या किया, बाद में भी यही, उसकी बेहतर जॉब, ये वो, सेम कंपैरिजन आज तक भी ऑन है, उसके बेहतर कपड़े, उसकी बेहतर ज्वेलरी, उसका बेहतर घर, उसका बेहतर पति, उसकी बेहतर वाइफ, उसके बेहतर बच्चे, और धीरे धीरे कंपैरिजन हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। फिर अडल्टहुड में क्या होता है, पैसे का कंपैरिजन, रिलेशनशिप का कंपैरिजन, ब्यूटी का कंपैरिजन, सक्सेस का कंपैरिजन, स्पिरिचुअलिटी का कंपैरिजन, एंड ये जीवन भर चलता रहता है। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और इंटेंस बना दिया बाय द वे, और कॉन्टिन्यूसली दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं हम लोग, और फिर सीक्रेटली महसूस करते हैं कि मैं काफी नहीं हूँ। क्या होता है जब हम दूसरों की लाइफ को सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक इंसान पूरे साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप पर जाता है, हम उसकी हाईलाइट को देखते हैं, अरे वाह क्या जीवन है इसका, तो कितना खुश है यार, ये तो एक साल में एक बार गया है, अगले दिन किसी और का दिखाई देता है, 10 दिन बाद किसी और का दिखाई देता है, और आपको लगता है सबका जीवन इतना अच्छा, मेरी लाइफ को क्या हुआ है, यू स्टार्ट कंपेयरिंग। हो सकता है आपके साथ ऐसे 4 इंसिडेंट आए हो लेकिन फिर भी आप अपने आप गलत कंपैरिजन में लग जाते हो, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे वही डालते हैं जो उनका बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ होता है, और वो नहीं भी दिखे तो भी वही डालते हैं, वो खुश ना भी हो तब भी वही डालते हैं। ये इसमें एक लाइन है, द मोमेंट यू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन योर साइकोलॉजी क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कंपैरिजन का हिडन मैसेज होता है, मुझे किसी और के जैसा बनना है, और जब इंसान कॉन्स्टेंटली किसी और को की तरह बनने की कोशिश कर रहा है तो वो खुद को तो लूज करेगा ही। हर इंसान की अलग जर्नी है, हर इंसान का टाइमिंग अलग है, हर इंसान का पर्पस अलग है, लेकिन कंपैरिजन माइंड को ये फील कराता है कि मैं पीछे हूँ, और ये फीलिंग एंजाइटी क्रिएट करती है। कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि अ फ्लावर डज नॉट कंपेयर इटसेल्फ टू अनदर फ्लावर, इट सिंपली ब्लूम्स। कितनी ब्यूटीफुल बात है यार, आपको लगता है कि रोज जो है सनफ्लावर बनने की कोशिश करता होगा क्या, चांद कभी सूरज से अपना कंपेयर करता होगा क्या? नेचर में सब अपनी यूनिकनेस में खूबसूरत है, सिर्फ ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो कंपैरिजन के कारण सफर कर रहे हैं, और जब कंपैरिजन खत्म होता है तो इंसान पहली बार ग्रैटिट्यूड फील करता है, पीस फील करता है, ऑथेंटिसिटी फील करता है, और धीरे धीरे वो अपनी रियल जर्नी पर फोकस करना शुरू कर देता है, नॉट टू बिकम बेटर देन अदर्स बट टू बिकम फुली अवेयर ऑफ व्हाट ही और शी इज। आपको किसी से बेहतर नहीं बनना, आपको बस अपने आप को जानना है और अपने आप को थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहना यार। रियल इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम अवेयरनेस, ठीक है। इसमें बहुत सुंदर लाइन है कि रियल इंटेलिजेंस इज बॉर्न थ्रू

अवेयरनेस। आज की दुनिया में हम इंटेलिजेंस को मोस्टली डिग्री, मार्क्स, मेमोरी, नॉलेज, अचीवमेंट्स से मेजर करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस सेम चीज नहीं है। एक इंसान बहुत एजुकेटेड हो सकता है लेकिन इंटरनली कंफ्यूज भी हो सकता है। एक इंसान के पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है बट लेकिन वो इमोशनली इमेच्योर भी हो सकता है, क्योंकि रियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ किताबों की डिग्री से नहीं आ सकती। रियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस से आती है। अवेयरनेस का मतलब क्या है? वापस से डीपली ऑब्जर्व करना अपने थॉट्स को, अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को, अपने फियर को, अपने ईगो को, अपने बिहेवियर पैटर्न को। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं इतना गुस्सा क्यों जाता हूँ? मैं ऐसा क्यों सोचने लगता हूँ? मेरे मन में क्या चलता है? मेरी बॉडी कैसे हो जाती है यार उस वक्त? मैं सच में ब्लॉक कर लेता हूँ कि सब कुछ। और जब आप लाइफ को कॉन्शियसली देखते हो तो ये चीजें समझ में आने लगती है। बहुत सारे लोग मैकेनिकली जीत रहे हैं, हैबिचुअली रिएक्ट कर रहे हैं। किसी ने कुछ बोला, रिएक्ट किया, सिचुएशन आई, पैनिक किया, इमोशंस आए, हमने कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ले लिए। लेकिन अवेयर इंसान इंस्टेंटली रिएक्ट करता ही नहीं है, वो पॉज लेता है, रुकता है, शांत होता है यार, वो पहले ऑब्जर्व करता है। और इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से क्लैरिटी आती है। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट डिस्टॉर्शन इज इंटेलिजेंस। मतलब रियलिटी को वैसे देखना जैसी वो है, ना कि फियर के थ्रू, ईगो के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू, अजम्पशंस के थ्रू। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो है रियलिटी को तो खत्म ही कर रही है ना। अवेयर इंसान धीरे धीरे अपनी कंडीशनिंग को देखना शुरू करता है और जब उसके डिसीजन भी और साफ होने लगते हैं तो चीजें बेहतर होती है। रियल इंटेलिजेंस का साइन क्या है? कामनेस। आप बुरी सिचुएशन में प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्या करना चाहते हो? सेंसिटिविटी, ऑब्जर्वेशन, इमोशनल बैलेंस, डीप अंडरस्टैंडिंग, नो एरोगेंस, नो शोइंग ऑफ, नो प्रूविंग सुपीरियरिटी कि मैं किससे बेहतर हूँ, किससे बेहतर हूँ। कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग जब मन शांत होता है और अवेयर होता है तो एक नेचुरल इंटेलिजेंस इमर्ज होती है आपकी खुद की, और वो इंटेलिजेंस आपके रिलेशनशिप को हील करेगी, फियर को डिसॉल्व करती है, लाइफ में क्लैरिटी आती है और इंसान को इनर पीस की तरफ लेकर जाती है। तो अवेयरनेस ही ट्रू इंटेलिजेंस है। लेसन नंबर 8, फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। एक बहुत अच्छी कोट है, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हमारी पूरी लाइफ बाहर फोकस्ड रहती है। हम लोगों को कैसे एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को कैसे ब्लेम करते हैं, सोसाइटी को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, लेकिन एक चीज हम रेयरली करते हैं, खुद को ऑनेस्टली समझना। जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा तब तक उसकी लाइफ कंफ्यूजन में चलती रहती है, क्योंकि हमारी रियलिटी बाहर से कम अंदर से ज्यादा क्रिएट होती है। आपके लाइफ की इनसिक्योरिटीज हैं क्या? किन चीजों को खोने से डरते हो आप? किन चीजों से जरूरत से ज्यादा अटैच्ड हो? क्या चीजें आपको अकेला महसूस कराती है? क्या चीजें आपकी कंडीशनिंग बन चुकी है? आपके क्या क्या डर है? आपको किन चीजों से जेलसी महसूस होती है? ये सब आपके डिसीजंस और रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब। लेकिन बहुत सारे लोग इन पैटर्न्स को देख ही नहीं पाते, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। अगर किसी रिजेक्शन का डीप फियर आपके अंदर है कि कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा, आपका देखना ओवर अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, पोजेसिव हो जाओगे, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगे और फिर रिलेशनशिप को ब्लेम करोगे आप। लेकिन रूट क्या था? रूट तो कुछ और ही था। कहते हैं सेल्फ नॉलेज इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, मतलब खुद को जानना ही इस विजडम जो अल्टीमेट ज्ञान है उसकी शुरुआत है। मतलब अपने आप को समझना स्पिरिचुअलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला पॉइंट है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ जान लेना नहीं है, उसका मतलब अपने डार्क पैटर्न्स को भी देखना है। कई बार इसमें गुरु आपको मदद करता है। अपनी इनसिक्योरिटीज को भी समझना है, अपने फियर्स को अंडरस्टैंड करना है, अपने ईगो के रिएक्शन को नोटिस करना है। लेकिन अवेयरनेस ही, याद रखिएगा, आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, आप गिल्ट महसूस नहीं करेंगे, आप कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप भागने की कोशिश नहीं करेंगे। किताब में लिखा गया, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जब आप खुद को डीपली समझना शुरू करते हो तो धीरे धीरे कंफ्यूजन्स कम होती हैं, रिएक्शंस काम होते हैं, रिलेशनशिप हील होते हैं, इनर क्लैरिटी बढ़ने लगती है और तब रियल फ्रीडम शुरू होती है। फ्रीडम का मतलब एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस नहीं है। रियल फ्रीडम किससे है? डर से, कंडीशनिंग से, इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्यूजन अंदर ही अंदर चल रही है। और ये कहां से स्टार्ट होती है? सेल्फ अवेयरनेस। लेसन नंबर 9, अ बिजी माइंड कैन नॉट सी क्लियरली। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि एक क्राउडेड माइंड जो है वो कुछ भी सही से देख ही नहीं पाता। आज की दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान मेंटली ओवरलोडेड है, माइंड कॉन्टिन्यूसली बिजी रहता है, थॉट्स, वरी, सोशल मीडिया, फ्यूचर प्लानिंग, फियर, कंपैरिजन, नेक्स्ट गोल, डेटा, इमोशनल ड्रामा, मेलोड्रामा, एंडलेस इन्फॉर्मेशन। और धीरे धीरे माइंड इतना नॉइजी हो जाता है कि क्लैरिटी हटने ही लगती है, खत्म होने लगती है। आपने नोटिस किया होगा जब माइंड ओवर एक्टिव होता है, छोटी भी प्रॉब्लम जो होती है ना वो बहुत बड़ी लगने लगती है, छोटे भी इमोशन इंटेंस लगने लगते हैं। किसी का थोड़ा सा दूर जाना आपको लगता है छूट गया सब कुछ, डिसीजन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, आपका पीस खत्म होने लगता है, क्योंकि नॉइस क्लैरिटी को कवर कर रहा है ना, वो शोर क्लैरिटी को कवर कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी वाले पानी में आप अपनी परछाई को नहीं देख पाते। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइन, मोस्ट पीपल साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं।

ज्यादातर लोग साइलेंस से बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं फोन के साथ, म्यूजिक के साथ, गॉसिप के साथ, ओवर वर्किंग, ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन. क्योंकि अगर माइंड शांत हो गया तो इंसान को खुद को देखना पड़ जाएगा भाई, और वही चीज माइंड अवॉइड कर रहा है. लेकिन इंटरेस्टिंगली क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं आती, क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं आती, ज्यादा सोचने से नहीं आती है, क्लैरिटी आती है साइलेंस से. आप लोगों ने नोटिस किया है, बहुत पुरानी चीज है, सबसे अच्छे थॉट्स, कुछ नए आइडियाज नहाते वक्त क्यों आते हैं, वॉशरूम में बैठ के क्यों आते हैं ज्यादातर थॉट्स? कुछ तो साइंस होगा इसका, क्यों आप कुछ नहीं सोच रहे थे, आप साइलेंस में होते ज्यादातर. अब था वो बात अलग है, अब तो हम स्पॉट पर होते हैं तो फोन पर होते हैं, वो एक अलग चीज है. बट बहुत देखो, शावर ऊपर से गिर रहा है या आप नहा रहे हो और कुछ तो चल रहा है यार, वो बाहर आके आप कहते हो यार ये करते हैं, इसको करना चाहिए यार, इसको नोट में भूलना चाहूं यार. वो कहा गया ना, डू नॉट फोर्स द माइंड टू बिकम क्वाइट, अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉइजी. मन को फोर्सफुली शांत करने की कोशिश मत करो, अंडरस्टैंड करो ये शोर है क्यों. कितनी डीप बात है ये, सोचो कितनी डीप बात. मतलब माइंड को कंट्रोल करने की जगह ऑब्जर्व करो ना, ये क्या सोचता रहता है भाई, क्या चलता रहता है, क्या सोचता रहता हूँ मैं, तो किससे भाग किससे रहा हूँ मैं, ऐसे कौन से मेरे डर है, मुझे क्या इनसिक्योरिटी है, मैं क्या जी रहा हूँ लाइफ, व्हाट इज माय लाइफ, मैं कर क्या रहा हूँ, किस इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ. और कह रहा हूँ ये प्यार है मेरा. और धीरे धीरे अवेयरनेस की वजह से जो नॉइस है नेचुरली रिड्यूस होने लगती है. और जब मन शांत होता है तो क्या होता है, इंसान बेहतर डिसीजन लेता है, रिलेशनशिप को देख पाता है, इमोशंस को हैंडल कर पाता है, और लाइफ को डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपीरियंस कर पाता है. कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं है, साइलेंस है इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, हाईएस्ट इंटेलिजेंस. इसलिए साइलेंस इज द की. शांत रहो. शांत रहने का मतलब एक कमरे में बंद होकर किताब पढ़ना नहीं है, शांत रहने का मतलब है एक कमरे में जब हम कुछ ना हो, कुछ नहीं कर रहे, सोच रहे बस बैठे हैं, थॉट आ रहे जा रहे हैं, थॉट आ रहे जा रहे, ऑब्जर्व कर रहे हो आप, यू हैव बिकम एन ऑब्जर्वर. एंड लेसन नंबर 10, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लेसन आई फेल्ट. हालांकि बहुत इसमें और भी चैप्टर हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, बट ये 10 मेरे को सबसे अच्छे लगे, और ये 10 और वन ऑफ द बेस्ट. अवेयरनेस इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मेशन. और कितनी प्यारी थॉट है. अगर कृष्णमूर्ति जी की सारी टीचिंग्स का आप एसेंस देखो, इस पूरी किताब का एसेंस देखना शुरू करो ना, तो आप ये समझ जाएगा कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. हम लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या सब कर लें, 50 किताबें पढ़ लें, 100 ये कर लें, ये कोर्स कर लें, ये डिग्री, ये सब कुछ, लेकिन हम जनरली चेंज को फोर्स से क्रिएट करना चाहते हैं. हम कहते हैं मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, मुझे फियर को हटाना है, मुझे ओवरथिंकिंग बंद करनी है, मुझे परफेक्ट बनना है, और फिर हम सप्रेस करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, मोटिवेशनल टेक्निक यूज करते हैं, खुद से लड़ते हैं. लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने कहा खूबसूरत बात, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स से नहीं होता, अवेयरनेस से होता है. देखो हर जगह अवेयरनेस है. अगर आपको जेलेसी फील होती है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, तो आप उसे हाइड करोगे, पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जेलेस हूँ, जस्टिफाई करोगे, गिल्टी फील करोगे, अरे यार क्यों लग रहा है मुझको ऐसा हो. लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा, ऑब्जर्व करो ना, सिंपली ऑब्जर्व इट, ऑनेस्टली देखो जेलेसी आ क्यों रही है, उसके पीछे की इनसिक्योरिटी क्या है, कंपैरिजन क्या है, डर क्या है, बिना जजमेंट के, बिना सप्रेशन के, बिना भागे, बिना एस्केप के. और जब ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी डीप होगी तो अंडरस्टैंडिंग नेचुरली इमर्ज होगी, और अंडरस्टैंडिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करती है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमारे अंदर डर है, एंगर है या ईगो है, प्रॉब्लम ये है कि हम अनकॉन्शियस हैं. अनकॉन्शियस मतलब अरे पता ही नहीं क्यों चल रहा है, कुछ लग रहा है बस, कुछ हम अपने पैटर्न्स को देखते ही नहीं है, हम मैकेनिकली रिएक्ट करते हैं. लेकिन अवेयरनेस मैकेनिकली लिविंग को ब्रेक कर देती है ना, आप जो जी रहे हो उसको तो ब्रेक कर रही है ना, नेचुरल आप होनी ना. जब इंसान डीपली अवेयर होता है या होना शुरू करता है तो रिएक्शन स्लो हो जाते हैं. कुछ भी बोले आप, शांत से पहले ऑब्जर्व करते हो, मन जो है शांत होने लगता है, इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है, अननेसेसरी जो सफरिंग है सब खत्म हो जाती है. आपको लगता है अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़े दिन बाद नहीं लगता आपको, थोड़ा दिन बाद आप अपने आप को जानने लगते हो. और धीरे धीरे विदाउट फोर्स, विदाउट प्रिटेंडिंग, एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है. और इसीलिए इसमें कृष्णमूर्ति जी ने कहा द सीइंग इज द डूइंग. मतलब जब आप किसी चीज को ट्रूली देख लेते हो, वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है. यानी कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है. तो सबसे बड़ा लेसन क्या है इस किताब से? ऐसे तो बहुत सारे लेसन हैं इसमें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अवेयरनेस. इट इज ऑल अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी. देयर इज नथिंग आउटसाइड, इट इज ऑल इनसाइड. हम बोलते हैं द मैजिक इज इन यू. मैजिक हम सबके अंदर है. और ये मैजिक हम सबके अंदर इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं. और हम जब वो समझना शुरू कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कैसे मेहनत करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, तो मैं अपने आप को जानने लगता हूँ. प्रॉब्लम तब होती है जब मैं अपने अंदर सवाल छोड़कर बाहर ही ढूंढ रहा हूँ सारे सवालों के जवाब. आपके गुरु आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपकी है, अवेयरनेस आपकी है. और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि देयर वाज नथिंग आउटसाइड, जो था वो अंदर ही तो था सब कुछ. मैं क्या बाहर दुनिया में भगवान ढूंढ रहा हूँ, भगवान तो मेरे अंदर ही है. यही बोलते हैं ना, मैं क्या शांति दुनिया में ढूंढ रहा हूँ, एंटरटेनमेंट में. अरे शांति तो अंदर ही है. मैं क्या बाहरी तलाश कर रहा हूँ, अरे मेरे अंदर ही तो था सब कुछ. इट इज ऑल इनसाइड मी.

0: बड़ी ज्ञान ज्ञान भरी बातें लगती हैं, बड़ी स्पिरिचुअलिटी वाली बातें लगनी भी चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअल ही किताब है ये। लेकिन इसको समझना, मैं देखो सुन, ऐसे मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो बातें हमने की है ना, ये हर किसी को समझ में नहीं आएंगी। इसको समझने के लिए भी हमें समझना पड़ेगा खुद को। लेकिन मुझे सच बताऊं, मुझे लगता है कि जब हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है जीवन का, नॉट काम का, जीवन का, ये बातें आपको और डीप लगती हैं, फिर आपको समझ में आती है। बिकॉज बहुत सारी चीजें कम्स विद ओनली ओनली ओनली विद लाइफ एक्सपीरियंस। एंड हम लोग जितने भी यंग लोग हैं, वी आर फॉर्चुनेट कि ये सब चीजें आज समझने को मिल रही हैं, ठीक है। इट इज नॉट बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज बिकॉज हम सब लोग इन सब चीजों से अनजान है। हम बाहर ढूंढते रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, यही चलता रहेगा सब कुछ। बट जब धीरे धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आने लगती है, तो हमें समझ में आता है कि भाई ये बढ़ने लगा, इसकी उम्र बढ़ रही है, मस्त हो रहा है सब। मैं हूँ 25 साल का, बट मैं 40 साल तक पहुंच चुका हूँ भाई, मेंटली आई एम देयर। अपने आप को समझना ही जीत है। चेक करो ना अपनी फीलिंग्स को, बाहर वाले कोई क्या ही बताएगा आपको। कोई कैसे आपके जीवन में आता है और हिला के चला जाता है, कोई कुछ कहता है कान में और आप दूसरे कान आपका पक जाता है, आप सोचें कहीं भगवान क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या बोल दिया इसने। अरे दैट मींस आप अपने आप को सुनने के बजाय आप पूरी दुनिया को सुन रहे हो, और आप अपने आप को क्या स्टैंप लगा चुके हो, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि लाइफ उतनी मुश्किल है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट जवाब, अगर मुश्किल है तो उसके जवाब आपके अंदर है, बाहर नहीं है यार। तो स्टॉप लुकिंग आउटसाइड, लुक इनसाइड, बी अवेयर। सो थैंक यू सो मच।
1: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
2: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
3: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
2: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
3: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
2: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
3: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
2: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
3: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
4: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुँचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7-8 PM, संडे 1-5 PM।
5: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIA एप्लीकेशंस, फैमिली इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन अते सिटीजनशिप एप्लीकेशन विच लंबा तजर्बा अते महारत रखता है। तुहाडी सहूलत लई मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों अते इंद्रजोत कौर ढिल्लों इक्को छत हेठ इमिग्रेशन अते इंश्योरेंस दीआं सेवावां प्रदान करते हैं। सानू संपर्क करने लई 403-225-1111। मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड,
6: रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट।
4: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
7: Hey. ਐਸ਼ਲੀ ਸੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧਾ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ

दोष भी लगाए। ट्रंप ने कैनेडा च अमरीकी बैंकां दी घाट ते नाराजगी जाहर कीती। उन्होंने कहा कि कैनेडा दे वड्डे बैंक अमरीका च काम कर रहे ने ते इत्थों मोटी कमाई कर रहे ने, पर कैनेडा अमरीकी बैंकां नूं अपने देश च काम करन दी इजाजत नहीं दिंदा। हालांकि कैनेडियन बैंकिंग एसोसीएशन ने इसका खंडन करदिआं पहलां ही साफ कीता है कि कैनेडा च अद्धे तों वध विदेशी बैंकां दीआं संपत्तियां अमरीकी बैंकां दीआं ने। इस तों इलावा ट्रंप ने हवाई जहाजां दे प्रमाणीकरण दा मुद्दा भी चुकिआ। उन्होंने कहा कि कैनेडा अपनी स्थानक कंपनी बंबार्डियर बचाउण लई अमरीका दे गल्फ स्ट्रीम जेट्स नूं कैनेडा च वेचण तों रोक रहा है। ट्रंप दीआं धमकीआं तों बाद ट्रांसपोर्ट कैनेडा दे गल्फ स्ट्रीम दे दो मॉडलां नूं मानता दित्ती गई सी, पर कुछ मॉडलां ते अजे भी कम बाकी है। कैनेडा दे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वल्लों 8 सितंबर तों अमरीका ते जवाबी टैरिफ लगाउण दे फैसले ते ट्रंप ने कहा कि कैनेडा दे हौसले वध गए ने, उन्हां नूं साडी लोड़ है, सानूं उन्हां दी नहीं। असीं अपने देश दा तेल गैस ते लक्कड़ वरत सकदे हां, असीं कैनेडा दीआं गड्डियां नहीं चाहुंदे। ट्रंप ने लेक अंटारियो दा नाम बदल के लेक अमरीका करन दे अपने कार्यकारी हुक्म दा भी बचा कीता। कैनेडा ते अमरीका दोवां देशां दे नेतावां वल्लों इस फैसले दी आलोचना कीती गई, पर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी लोग इस नूं पसंद कर रहे ने ते ओह अपने देश दे हितां लई लड़ रहे ने। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जॉर्ज कलूनी ने कनेडियन मिलिट्री कैडेट्स का मजाक उड़ाने लई अमरीकी रक्षा सकत्तर पीट हेगसेथ की सख्त शब्दों च आलोचना की है। वेनिस फिल्म फैसटिवल दौरान गलबात करदिआं कलूनी ने हेगसेथ की सोशल मीडिया पोस्ट से नाराजगी जाहर की, जिस विच ब्रिटिश कोलंबिया के कैडेट ट्रेनिंग सेंटर के मैंबरां का मजाक उड़ाया गया सी। कलूनी ने कहा कि दूजियां प्रति बेरहम अते अणपछाते होना बहुत ही शर्मनाक है। जदों रक्षा सकत्तर कैनेडा दीआं महिला फौजियां की तस्वीर पोस्ट करके मजाक उड़ाते ने तां सवाल उठता है कि नैतिकता कित्थे है। मैनू इस सब ते शर्म आउंदी है, पर असी इस मुश्किल समय तो बाहर निकलांगे। कलूनी ने अमरीका की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ते बोलदिआं कहा कि देश इस वेले गलत हत्थां च है। असी पहला भी 1968 वर्गे औखे समय देखे ने जदों हिंसा बहुत ज्यादा सी। मैनू उम्मीद है कि असी इस दौर तो उभरांगे ते आउण वालियां चोणां नाल स्थिति च सुधार आवेगा। अमरीकी रक्षा सकत्तर की पोस्ट तो बाद कैनेडा च भी भारी विरोध देखण नूं मिल रहा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमरीकी प्रशासन के अधिकारियों वालों कनेडियन फौज बारे अजिहियां टिप्पणियां करना उन्हां दे अहुदे दी मर्यादा दे खिलाफ है। ब्रिटिश कोलंबिया दे प्रीमियर डेविड एबी ने भी इस पोस्ट नूं बेहद शर्मनाक दस्या ते अमरीकी नेतावां दी लीडरशिप ते सवाल चुके। सांसद गार्नेट जीनियस ने अमरीका नूं चेते करवाया कि कैनेडा दे 158 फौजियां ने अफगानिस्तान च अमरीका ते होए हमले तों बाद अपनियां जानां वारियां सन। दोवां देशां दा आजादी लई मिल के लड़न दा इक वड्डा इतिहास रहा है। द आर्मी कैडेट लीग आफ कैनेडा ने भी इस मजाक की निंदा की। उन्हां कहा कि 12 तों 18 साल दे बच्चियां ते नौजवानां दा मजाक उड़ाउणा बिल्कुल अस्वीकारण योग है, जो अपने समाज की सेवा अते अपने भविख नूं सुधारण लई मेहनत कर रहे ने। यह प्रोग्राम नौजवानां च आत्म विश्वास अते अगवाई दे गुण विकसित करन लई चलाया जांदा है। कैनेडा दे वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैंपेन ने ऐलान किया कि पेट्रोल अते डीजल ते केंद्रीय एक्साइज टैक्स दी छोट अगले साल फरवरी तक जारी रहेगी। सरकार ने अप्रैल च पेट्रोल ते 10 सेंट प्रति लीटर ते डीजल ते 4 सेंट प्रति लीटर टैक्स मुअत्तल कर दिता सी। इह छोट 8 सितंबर नूं खत्म होण वाली सी। ईरान च चल रही जंग कारण अंतरराष्ट्री पद्धर ते तेल दीआं कीमतां वध रहीआं ने। इस वाधे तो आम लोगों नूं बचाउण दे लई सरकार ने टैक्स छोट वधाउण दा फैसला कीता है। वित्त मंत्री शैंपेन ने कहा है कि कैनेडा दे लोकां ने यह विश्वव्यापी समस्या पैदा नहीं की, पर वह इसका असर भुगत रहे ने। यह फैसला उन्हां परिवारां लई एक वड्डी राहत है जो काम ते जांदे ने, बच्चां नूं स्कूल जां गतिविधियां लई लिजांदे ने ते रोजाना दे खर्चां नूं संभालदे ने। नवें शेड्यूल मुताबक जनवरी 2027 तक तेल उत्ते एक्साइज टैक्स पूरी तरह मुअत्तल रहेगा। फरवरी ते मार्च 2027 तों टैक्स अद्धी दर ते वापस लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2027 तों एक्साइज टैक्स पूरी तरह नाल दोबारा लागू हो जाएगा। दूजे पासे फैडरल कंजरवेटिव पार्टी लेबर डे ते गैस टैक्स वधाउण दे विरोध च सोशल मीडिया ते लगातार मुहिम चला रही है, जिस नूं उन्हां ने फिर तो होर तेज कर दिता है। नेपाल अते चीन दे सरहदी खेतर च आए भयानक हड़ तों बाद लापता होए 30 कनेडियन नागरिकां चों एक व्यक्ति सुरक्षित मिल गया है। कैनेडा दी विदेश मंत्री अनीता आनंद ने दस्या कि संचार सेवावां ठप होण कारण इस व्यक्ति नाल संपर्क नहीं हो पा रहा सी, पर मंगलवार नूं उस नाल संपर्क हो गया। नेपाल अते चीन दे हिमालियन सरहदी खेतर च ग्लेशियर टुटण कारण अचानक भयानक हड़ आ गया सी। इस कुदरती आफत च 1100 तों वध लोकां दी मौत हो चुकी है ते 3900 तों वध लोक अजे भी लापता।
ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 590 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ $50 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ

0: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: व्हेनेवर यू वांट इट व्हेयरएवर यू आर एट द पाम ऑफ योर हैंड्स लिसन टू FM 94.7 एनीवेयर विद द फेयरचाइल्ड रेडियो ऐप Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
2: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

सहयोग दे नाल सो ये प्रोग्राम थोड़े तक पहुंचा रहे ने सोनिक इंश्योरेंस 5878321208

0: या फिर फोन कर लो 4039036757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स। कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ, इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है। नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4096। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
2: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, आरईएसपी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
4: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
0: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
0: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर,
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
0: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
0: 403-835-2222।

0: इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है। किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तों लै के हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
2: Rhythm of Life Entertainment Sonic Insurance and Kohinoor Jewelers proudly present Sonu Nigam live in concert. Friday, September 4 at Winsport Arena. Tickets available at Ticketmaster or call Raman Purba 403-479-2956. Mega

फ्राइडे सितंबर 4th 2026, शाम के 5:03 हुए हैं। 94.7 FM, मैं हूं शान। मेनली क्लाउडी पार्टली सनी 16 डिग्रीज है इन एंड अराउंड कैलगरी। पिछले 2-3 हफ्तों के बाद पहली बार थोड़ा ठंडा मौसम है, हल्की जैकेट वाला। It is a reminder that party is going to be soon over.

हम जितने मर्जी समझदार हों, जितने मर्जी अकलमंद हों, जितने मर्जी सियाने हों, उर्दू हिंदी में कहते हैं सियाने, पंजाबी में कहते हैं सियाने, हम जितने मर्जी सियाने हों, हम सबके साथ एक मसला है। और हम सब से मतलब ये कि एक्सेप्शन छोड़ के हम सबके साथ एक मसला है। और वो मसला ये है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, ग्रोइंग अप डज नॉट मीन ग्रोइंग आउट ऑफ जॉय। हम चूंकि जो जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, वो हैं इतनी सीरियस, हैं इतनी संजीदा, उसमें उनमें क्या है, माफ कीजिएगा, उनमें रिस्पांसिबिलिटीज हैं, डेडलाइंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर क्या होता है, वी फॉरगेट हाउ ब्यूटीफुल इट फील्स टू सिंपली, जब आप हंसते हैं, खेलते हैं, इंजॉय करते हैं छोटी छोटी चीजों को। अच्छा, ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये क्राइसिस में है ह्यूमैनिटी इस वक्त कि मर्सिडीज गाड़ी है, नीचे पैसे शैसे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, घर अच्छा है रहने को, लेकिन मुंह पे लिटरली 12 बजे हुए ग्रम्पी फेस। हर दूसरा शख्स आप मिले तो आपको ऐसे ही मिलेगा। एक तो रीजन ये है कि सम्स क्रॉनिकली, जिसे क्रॉनिक का ग्रम्पीनेस नहीं हो जाती, वो हमें हो गई हुई है। और दूसरा ये है कि समहाउ हम में से बहुत सारे लोगों ने ये कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में बिठा लिया है कि अगर आप संजीदा हो, अगर आप सीरियस हो, तो लोग आपको बड़ा सीरियस लेते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। अच्छा, ये टाइम फर हो चुका है। एक जमाना होता था जब आप ऐसे संजीदा और ग्रम्पी और सड़ियल से रहते थे तो लोग आपकी इज्जत करते थे। आजकल पीपल कनेक्ट विद पीपल जो थोड़े हंसी मजाक करें, जो थोड़ा इंगेज हों आपके साथ, यानी सिंपल सवाल के जवाब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंगेजमेंट हो, जहां पर भी आप हों, सोशल एनवायरनमेंट में या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो अगर आपने भी अपने दिल में ये बिठा रखा है कि यू नो थोड़ा सड़ियल फेस बना के रखें, थोड़ा लंबा सा फेस बना के रखें, थोड़ा गुस्से वाला, तो लोग समझ

क्या बात है, बड़ा संजीदा, बहुत ही सीरियस इंसान है ये, इसे बड़ा सीरियस लेना है। एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। आजकल लोग बिल्कुल याद नहीं रखते, अगले 30 सेकंड में भूल जाते हैं। अनटिल यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ, जिसे कहते हैं ह्यूमर, ह्यूमिलिटी, थोड़ा मस्ती वाले जेन्युइन से आप इंसान हैं तो लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। सो कीप दैट प्लेफुल लिटिल सोल अलाइव। जिंदगी जो है ना, लाइफ इज टू शॉर्ट, ये हम सुनते तो हैं पर रियलाइज नहीं करते, लाइफ इज टू शॉर्ट टू टेक एवरीथिंग सीरियसली। आपके आसपास लोग होंगे जो झूठ बोलेंगे, आपके आसपास लोग होंगे जो धोखा देंगे, आपके आसपास लोग होंगे जिनके एक्सपेक्टेशंस पे आप पूरा नहीं उतरेंगे, आपके पास आसपास लोग होंगे प्रिटेंड करेंगे। इसके बावजूद आपने कोशिश करनी है, जो भी सिचुएशन लाइफ की है आप उसमें खुश रहने की कोशिश करें। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो खुश रहना है। बहुत हो गया ज्ञान, बहुत हो गया क्या कहते हैं लेक्चर। ऐसा करते हैं आज के प्रोग्राम में, मेरा ख्याल ये है कि आपको गजलें सुनाई जाएं, ज्यादातर गजलें सुनाई जाएं, और आज की जो पहली गजल है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी गजल है ये। अच्छा, इसमें आपने सुन रखी होगी, कई बार सुन रखी होगी आपने, इसमें एक क्या कहते हैं, एक वो है वसल और हिजर। हम नगमा सिरा कुछ गजलों के, हम सूरत घर कुछ ख्वाबों के, हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत घर कुछ ख्वाबों के, बेजज्बा शौक सुनाएं क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताएं क्या, है जज्बा शौक सुनाएं क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। ये जो वसल होता है, ये जो वसल है ना, वसल और हिजर, वसल होता है अगर आपको नहीं पता तो मिलना, इकट्ठे होना, महबूब के पास होना, मोहब्बत के साथ होना, और हिजर होता है जुदाई, दूरी, जब आप कहीं महबूब से दूर होते हैं। इस गजल को जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब थोड़ी सी बात मैंने कर ही दी है इस बारे में। तो मॉडर्न म्यूजिक पे ये बनाई गई है और ये भी खूबसूरत है पहले से भी ज्यादा। वो इश्क़

0: call for free delivery.
1: अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम.
0: Sorry, take ours only.
2: 3613000 पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओएसएस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो

0: पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल ले प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा ले यादगार बन जावे साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
1: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
2: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208
1: बड़े सोचा च पए हो वीर जी की गल होगी
3: थक गए हैं घर लब लब के कैलगरी च घर खरीदना ता हुण बड़ा ही औखा
1: तुसी घर चंद्रमा ते लब दे होने कैलगरी च नहीं आ नोट करो नंबर अरुण कौशल दा
3: कर लिया जी नोट फोन नंबर 403-618-2112
1: रियल एस्टेट दे सब मसलियां दा हल करनगे प्रेप रियलिटी दे मशहूर रियलटर अरुण कौशल
3: अच्छा जी अरुण कौशल लब के देणगे सानू घर
1: जी हां कल्ले घर नहीं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होवे जां कमर्शियल घर खरीदना होवे जां बेचना प्रेप रियलिटी दी वड्डी टीम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112 ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
4: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 403-903-6757
1: ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲਸ
5: Change your mood with our unique ability to entertain, educate, and inform while you're driving, working, walking, at home, or away from home. Keep listening. Ahem waqiat aur khabrein, sports, khoobsurat ashar, and your participation. Stay tuned. We will be right back.
6: इसके साथ ही आपको ले चलता हूँ एक पुराने बहुत ही खूबसूरत गाने उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब की आवाज एंड अपने जमाने का बड़ा सुपर हुपर डुपर सॉन्ग हुआ करता था ये

0: से शिकायत कौन करे। आप होते वल्नरेबल अपनों के साथ हैं, खैर आपको कैसे धोखा दे सकते हैं। प्रोग्राम है 94.7 एफएम पे संगीत बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुर संगम रेडियो। मैं हूं शान। कॉल्स का, तारीफों का, मशवरों का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दिल को छू जाने वाली मौसीकी, कानों में रस घोलती आवाज, संगीत स्टूडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर पॉपुलर ट्यून्स राइट हियर इन संगीत स्टूडियो।
2: आज फेर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
5: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल

ग्रेट चीजें हैं. यस, गंदगी और मुल्कों में भी होगी, पर इसका मतलब ये होता है, या किसी भी और कंट्री, आप कनाडा को ले लें, आप मैक्सिको को ले लें, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज कर देंगे. अब कनाडा के साथ जो ट्रेड के इश्यूज चल रहे हैं, जो लेक ओंटेरियो है, कनाडा की वन ऑफ बहुत ही बड़ी और आइकॉनिक लेक है, उसका नाम चेंज कर दिया. कभी आपने वो छोटे छोटे बच्चे नहीं लिटरली करते थे कि इसने मुझे पुश किया है, इसने मेरी तरफ देखा है, इसने मेरी तरफ देख के हंसा है. ये इस तरह की चीजें आप दुनिया की इतने बड़े मुल्क, मोस्ट पावरफुल नेशन के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह की चीजें करें. दो हफ्ते पहले मिशिगन से जो नए सेनेट के कैंडिडेट बने हैं डेमोक्रेट पार्टी के, अब्दुर्रहमान अल अहमद, पता नहीं उनका पूरा नाम क्या है, उनके बारे में ट्वीट कर दी, उनकी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ हिजाब पहनते, एक तरफ उसकी तस्वीर लगा दी, एक तरफ अपनी वाइफ के साथ पिक्चर लगा दी और कहा कि टू डिफरेंट अमेरिकाज. अब ये आम लोग थोड़ी बहुत रेसिस्ट हम हो सारे ही हमारे अंदर होते हैं, लेकिन जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल जगह पे बैठे होते हैं, इवन इफ यू आपके अंदर कोई कमियां कोताहियां हैं तो आप प्रिटेंड करते हैं, आप सामने नहीं आने देते, आप क्लास शो करते हैं. अच्छा, फिर अब ईरान की वॉर को लेके वो AI जनरेटेड वीडियोस लगाते रहते हैं जिसमें आग ही आग है, फायर है, बॉम्बिंग हो रही है. एक दो मौकों पे तो जो US की आर्मी है उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ा कि ये सब जो वीडियोस हैं ये रियल वॉर की नहीं है, इनका रियल वॉर से कुछ लेना देना नहीं है. अच्छा, ये हो गया. अब कनाडा को 51st स्टेट बना लेंगे, कनाडा को हम प्रोटेक्ट करते हैं, कनाडा का ये जो बॉर्डर है इसके बीच में लाइन है, ये इतनी फजूल लाइन है. अच्छा, इस तरह की बातें नेवर एंडिंग टाइप की चीजें होती हैं. अब जब लेक ओंटेरियो को उन्होंने नाम चेंज किया तो ये और भी बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लगा. अब वो ये कहते हैं कि ये जो दोनों तरफ ओशन है, मीडियम रिपोर्ट्स में कि कनाडा के जो ईस्ट अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है उनके भी नाम बदल देंगे, पता नहीं उनका क्या नाम रख देंगे ये. सो अब जब एक प्रेसिडेंट इतनी पावरफुल पोजीशन पे बैठा इस तरह की बातें कर रहा हो, लंदन के मेयर के बारे में वो चीजें कह रहे होते हैं, अब उनके जो कैबिनेट है, जाहिर है जिस तरह का लीडर हो उसी तरह के आप लोग अट्रैक्ट करते हैं. अब पीट हैग्सेट उनके जो सेक्रेटरी वॉर हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर भी आप उन्हें कह सकते हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट कर दिया और उसमें कैनेडियन कैडेट्स की एक पिक्चर लगा दी जिसमें एक बच्ची जिसका वेट थोड़ा ज्यादा था उसकी तस्वीर लगा के उसने कहा कि रियली समथिंग और नॉट इन रियलिटी, और सब मजाक उड़ाया. अब आप सेक्रेटरी हैं एक बड़े मुल्क, अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक संजीदा बहुत ही सीरियस डेजिग्नेशन है ये. आप एक दूसरे मुल्क के कैडेट की तस्वीर लगा के, कैडेट्स अगर आपको नहीं पता तो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, ये आर्मी नहीं होती, ये रियल आर्मी मैन नहीं होते या वेमेन नहीं होते, ये बच्चे हैं जिन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कैंपिंग करते हैं, यूनिफॉर्म इनकी होती है, अच्छा उसे लाइफ स्किल्स उनको सिखाई जाती है, बट दे माइनर्स 12 से 18 ईयर्स ओल्ड के. अच्छा, एयर कैडेट्स होते हैं, नेवल कैडेट्स होते हैं, आर्मी कैडेट्स होते हैं. अब जाहिर है ये जो बच्चे हैं ये रियल आर्मी नहीं है, तो इनमें बच्चे आपको शॉर्ट भी मिलेंगे, टॉल भी मिलेंगे, ओवरवेट भी, कमवेट भी मिलेंगे, पर देयर किड्स. अब उन किड्स की तस्वीर लगा के आपने किसी का मजाक उड़ाना, किसी को मॉक करना, ये उनके एक कैबिनेट के मेंबर. उनके एक और कैबिनेट मेंबर हैं जो सेक्रेटरी ट्रेड हैं, हार्वर्ड लुटनिक. अब उन्होंने अब फरमाया ताज़ा तरीन के भाई जो ओंटेरियो है, अब क्योंकि ओंटेरियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, वो बहुत टेक ऑन करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को और बहुत ही सही तरह से, जो अगर कनाडा से कोई जवाब देता है तो वो देते हैं. अब उन्होंने कहा जी ये जो टोरंटो है ये बेसिकली बहुत ही परफेक्ट 51st स्टेट बनता है और इस तरह की बातें, फिर रिस्पॉन्सिबल. दिस डे एंड एज आप सोच सकते हैं कि किसी कंट्री की सोवरेनिटी पर आप इस तरह बात करें कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे, हम उसे अपनी स्टेट बना लेंगे, हम उसे अपना सूबा बना लेंगे, और ये कोई दुश्मन मुल्क नहीं कर रहा. दो दुनिया के बेस्ट कंट्रीज लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे बड़ी दुनिया की ट्रेड होती है, जस्ट अंडर $1 trillion. और अगली जो अमेरिका की ट्रेड 3 मुल्कों से होती है जो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे, उन तीनों की टोटल ट्रेड मिला के भी उतनी नहीं जितनी कनाडा और अमेरिका की होती है. इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इतना ये नेशंस एक दूसरे के साथ हैं. बॉर्डर आप क्रॉस करते हैं तो आपको आइडिया भी नहीं होता आप दूसरे मुल्क में आ गए. एंड आप उस कंट्री के बारे में जो आपके साथ अफगानिस्तान में लड़ा, जो हर जगह जहां आप कहते हैं आपके साथ होता है, जो ब्लैंक चेक की तरह सपोर्ट करता है आपको, जहां से आपको कोई फिक्र कोई परेशानी नहीं इस बॉर्डर से जितना कि मैक्सिको की तरफ से आपको होता है. एंड आप और पीपल लव ईच अदर, अमेरिकन पीपल आर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, दे ग्रेट पीपल, ग्रेट एज कैनेडियंस. पर ये जो लीडर्स इस तरह की हरकतें करते हैं ये नेवर एंडिंग है. आपको सीरियसली कभी

कभी तो ये लगता है, अभी उस पे मीम्स बड़ी मजे मजे की बनना शुरू बन जाती है. कैनेडियंस का एक सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मजे का. अब उन्होंने जब लेक ओंटारियो का नाम चेंज करके लेक अमेरिका किया तो मुझे बहुत ही एक प्यारी मीम देखने का मौका मिला. बॉस्टन पिज्जा, हालांकि ये कैनेडियन कंपनी है, आई थिंक एडमिंटन बेस्ड कंपनी है, ये नाम सिर्फ बॉस्टन है, तो उसकी बहुत ही अच्छी किसी ने मीम बनाई हुई थी कि जो बॉस्टन पिज्जा को ब्रैम्पटन पिज्जा किया, तो उनका अगर नेम चेंजेस की बात आ गई है तो फिर इसको ब्रैम्पटन पिज्जा कर दें, वही लोगो वही सारा कुछ सेम रहेगा, उसी फाउंट में ब्रैम्पटन कर दें इसको. सो कैनेडियंस आर ट्राइंग टू बी स्टिल पोलाइट, लेकिन आपकी सोवरेनिटी पे जब इस तरह से कोई बात करता है इससे बड़ी तो कोई खराब बात हो नहीं सकती. सो आपको इट इज सीरियसली इट इज ट्रबलिंग व्हेन पीपल राइज बियॉन्ड देयर जिसे कहते हैं कैरेक्टर्स सम एंड ये थोड़ा बहुत आप देखते थे, इस बड़े लेवल पे नहीं देखते थे कि प्रेसिडेंट उसकी कैबिनेट एक के बाद एक बंदर टेलीविजन पे बैठ के थ्रेट कर रहा है, बुली कर रहा है, अजीब गरीब रिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं. एंड सम पीपल आर गिवन पोजीशन ऑफ ग्रेट जैसे कहते हैं स्टैचर बिफोर दे हैव डेवलप्ड द कैरेक्टर कैपेसिटी और क्लास टू कैरी देम. जैसे कहते हैं कि आज आप तख्त नशी हैं तो कोई बात नहीं, धूल भी उड़ के बुलंदी पे पहुंच जाती है. प्रोग्राम है संगीत, ये था आज का टॉपिक ऑफ द वीक. संगीत स्टूडियो, संगीत स्टूडियो.

0: Vari 5876174696.
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुजो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
3: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
3: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
3: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222।
4: संगीत में अगली प्रेजेंटेशन, बड़ी लंबी एक कहानी मेरे प्यार दी, सतिंदर सरताज की खूबसूरत आवाज, उन्हीं का लिखा हुआ कलाम है। मुझे नहीं पता कि म्यूजिक उनका है कि नहीं है, पर व्हाट अ वंडरफुल

Cindy Studio with Sean. आज के प्रोग्राम की आखिरी प्रेजेंटेशन, ये कलाम आपने कव्वाली के अंदाज में भी सुना, गजल के अंदाज में भी सुना, फोक के अंदाज में भी सुना। एंड ये सूफी अंदाज है, लेकिन मॉडर्न म्यूजिक है, नए तरीके से रिकॉर्ड हुआ हुआ, और एक कहते हैं जादू है, नशा है। प्रोग्राम है संगीत में उषा।

0: कभी रुका है ना आज रुकेगा. I wish all of you love, peace, respect, हतल वस्त. आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी चैनल पे. फिर आएंगे घर. खुदा लाया.
1: शुक्रिया. आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया. शुक्रिया.
2: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.